मैं विसर ना जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना

वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोहन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार।

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोन पंच परवान।

0: exclusive radio partner, Leica Radio Network. History divided a nation, but could never divide humanity.
1: कौन सी आजादी और किसका मुल्क?
0: Witness the epic reunion of Sunny Deol and Rajkumar Santoshi in Batwara 1947.
2: वो माँ है माँ, माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए.
0: Starring Shabana Azmi, Priti Zinta, Karan Deol and Ali Fazal.
2: आज बच्चे के मुंह से निकला पहला लव्स माँ है.
0: Produced by Amir Khan. Experience the untold story of courage and hope. Batwara 1947. Now in cinemas.
3: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना.
4: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
3: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
5: बी पार्ट ऑफ अ हिस्टोरिक ग्रैंड ओपनिंग.
6: एक्सपीरियंस द न्यूली इनॉग्रेटेड BAPS स्वामीनारायण मंदिर इन पेरिस, अ वंस इन अ लाइफ टाइम स्पिरिचुअल जर्नी.
5: ट्रैवल विद your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River cruise and a Paris city tour.
6: Departure 5th of September. Call now on 0203 773 633.
5: Mantra Holidays, what's your travel mantra?
7: Safar naya par saathi wahi, aapke dil ke hai jo kareeb kahani wahi, jo dil mein basa tha wahi naam laaye hain, apno ko apno ke kareeb laaye hain.
8: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस.
9: स्काई चैनल 705, वर्जिन मीडिया 803 एंड EE392.
10: Leica रेडियो नेटवर्क, प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर, रागासन.
11: You probably think you're pretty good at multitasking behind the wheel. I mean, you have to multitask to drive. So what's wrong with checking your phone? The thing is, your brain simply for quick reply, affects your concentration, and makes you less able to react to hazards. If you use a mobile phone while driving, you're 4 times more likely to crash. Think. Put your phone away.
12: If I'm going out on my new paddleboard, the last thing I'm taking is my phone, right? Buoyancy aid, fine. But mobile? My whole life's on that phone. Why would I risk losing it in the... Coast Guard! Help!
13: Okay, help's on its way.
14: Grab my hand!
15: Phone. In a waterproof pouch. It's the first thing I pack now.
16: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
17: Cool music for a super hot summertime. On the Leica Radio Network.

0: This is Leica Radio.
1: This part of the show is brought to you by Star Plus.
2: Previously known as Utsav Plus.
1: Sky Channel 705, Virgin Media 803 and BT 392. Ready UK. Snill Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
2: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
1: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
2: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
1: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फौरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.

हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलशिता हमारा। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट, यो।

बच्चन की बैटिंग वाह वाह, बच्चन की एक्टिंग वाह वाह, सुनील गावस्कर वाह वाह, कपिल द सिक्सर वाह वाह, लता मंगेशकर वाह वाह, जाकिर का तबला वाह वाह, भारत नाट्यम वाह वाह, यहाँ का भांगड़ा वाह वाह, यहाँ की लावणी वाह वाह, यहाँ का डांडिया वाह वाह, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट।

0: जीते हैं मस्त होके मस्ती में लोग सारे, जो है मजा यहाँ पे वो ना मजा कहीं पे। यहाँ की ईद बाबा, यहाँ दिवाली बाबा, यहाँ की होली बाबा, दुल्हन की डोली बाबा, चनिया चोली बाबा, मीठी बोली बाबा।
1: North, South, East or West, India is the best, the land of culture, the land of dreams, this is the land of you and me।
0: राजे शिवाजी बाबा, अकबर बादशाह बाबा, महात्मा गांधी बाबा, चाचा नेहरू बाबा, बाबा अंबेडकर बाबा, मदर टेरेसा बाबा।
1: We're taking it up and we're taking it down, this is the Indian sound, together so strong in God we trust, yeah, you cannot beat us।
0: ताजमहल बाबा, चार मीनार बाबा, आम का अचार बाबा, यहाँ का प्यार बाबा, ऐश्वर्या राय बाबा, सुष्मिता सेन बाबा, ऑल इंडिया रेडियो बाबा, डीडी मेट्रो बाबा, दूरदर्शन बाबा।

0: सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
1: सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
0: हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलशन हमारा, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।

0: व्हाट अ सॉन्ग, लता जी और किशोरदा की आवाजों में। आर डी बर्मन के म्यूजिक पर आंधी फिल्म का ये गीत आपने सुना और पसंद भी किया। और उससे पहले आपको सुनवाया हमने राजेश रोशन के म्यूजिक से सजा हुआ मिस्टर नटवरलाल का गाना। और लीजिए दो गीतों के साथ आज के द ऋतु शर्मा शो की शुरुआत एक बार फिर से हो गई है। और आप सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। और जरा ये तो बताइए कैसे है आप सब, क्या किया पूरा वीक, कैसा बीता? हाय गर्मी कहते हुए बीता होगा, है ना? क्योंकि लास्ट वीक गर्मी बहुत ही ज्यादा थी, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। इस वीक टेम्परेचर थोड़ा कम होने जा रहा है और शायद हमें थोड़ी राहत की सांस मिलेगी। और अगले हफ्ते तो कुछ बारिश होने का भी अनुमान है, लेकिन अगले हफ्ते की बात हम अगले हफ्ते करेंगे। फिलहाल तो आपको बताते चले कि आप सुन रहे हैं लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और जहां पर भी हमारे साथी हमारा साथ दे रहे हैं, मेरी आवाज पहुंच रही है, सभी का स्वागत है इस शो में। और आज हम सभी भारतीय अपना 80वां या कहूं 80th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज के दिन की, इंडिपेंडेंस डे की आपको ढेरों ढेरों ढेरों बधाइयां, ढेरों शुभकामनाएं। और आगे बढ़ जाते हैं आज के विचार के साथ, जिसे विजय जी ने हमारे साथ शेयर किया है कि जिंदगी की हर ठोकर ने एक सबक सिखाया है, जिंदगी की हर ठोकर ने एक सबक सिखाया है कि रास्ता चाहे कैसा भी हो, भरोसा अपने पैरों पर ही रखो। क्या बात है।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: और आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से याद दिला दें कि आज वन पाउंड आपको देगा 128.65 भारतीय रुपए, लेकिन हमेशा की तरह ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाय एसबीआई ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Radio.
2: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
2: Mega blockbuster Dhurandhar on Star Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.
4: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
5: It's back and it's bigger.
6: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Vam Jewelers.
5: On Sunday, 1st November 2026 at the Ram Garia Centre.
6: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803-240580 or visit DiwaliShoppingFestival.co.uk.
5: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
7: History divided a nation, but could never divide humanity.
8: कौन सी आजादी और किसका मुल्क?
7: Witness the epic reunion of Sunny Deol and Rajkumar Santoshi in Batwara 1947.
9: वो माँ है माँ, माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए.
7: Starring Shabana Azmi, Priti Zinta, Karan Deol and Ali Fazal.
9: और बच्चे के मुंह से निकला पहला लफ्ज माँ है.
7: Produced by Amir Khan. Experience the untold story of courage and hope. Batwara 1947. Now in cinemas.

0: गोरी है कलाइयां तू ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। भाई कलाइयां गोरी हो या नहीं हो, लेकिन आज तो हरी चूड़ियों की मांग बनती है, क्योंकि आज दिन ही खास है और आज हरी हरी चूड़ियां, हरी हरी साड़ियां, सज धज के मेकअप करके सजने सवरने का दिन है, क्योंकि आज हरियाली तीज का त्योहार भी है, जो भगवान शंकर और पार्वती जी के परस्पर प्रेम का प्रतीक है। तो सबसे पहले तो हरियाली तीज की आप सभी को ढेरों ढेरों बधाइयां। एंड आई एम श्योर आज आपके प्लान में होगा कि किस तरह से हरियाली तीज को सेलिब्रेट किया जाए, क्योंकि ये सावन के महीने में आती है।
1: Brought to you by Derry Valley. Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: जब सब तरफ हरियाली ही हरियाली होती है और इसीलिए इसे हरियाली तीज भी कहा जाता है, लेकिन आज हरियाली तीज के साथ साथ पूरा भारत और सभी भारतवासी, जो चाहे भारत में रहते हो या कहीं और रहते हो, आज 80th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, यानी कि आज भारत का स्वतंत्रता दिवस है, जिसे हर जगह धूमधाम से गर्व और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और आप सब जानते ही हैं कि इसी ऐतिहासिक दिन यानी कि 15th अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिली थी। और हम ये कहेंगे कि ये दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि ये दिन उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों जैसे कि महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई और न जाने कितने लोग जिनके त्याग, संघर्ष और बलिदान की याद दिलाता है आज का दिन। आज का दिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर साल आज ही के दिन हम जाते हैं भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फैलाते हैं, देश को संबोधित करते हैं, आज भी ये किया गया, राष्ट्रगान भी गाया गया और 21 तोपों की सलामी भी दी गई। आई एम श्योर आपने ये सब नज़ारे बहुत ही अच्छी तरह से देखे होंगे। तो आज जितने भी साथी 15 अगस्त का त्यौहार मना रहे हैं, आज़ादी का त्यौहार मना रहे हैं, उन सभी को ढेरों ढेरों बधाइयां। और ये गाना मेरी ओर से आप सबके।

जी हाँ बिल्कुल, वो भारत देश है मेरा जिस पर हम सभी को गर्व है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी भारतवासियों को अपने संबोधन में यही कहा है कि सब एक

0: बहुत अच्छी बात लिखी है कि आप खुशहाल, आपको खुशहाल शनिवार और 80वें भारतीय स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और तिरंगे के रंग हमें गर्व, साहस, उम्मीद और एकजुटता से भर दे, और चलो हम सब अपनी तरफ से एक प्रगतिशील भारत बनाने में हिस्सा लें। हम सब भारत में रहते तो नहीं हैं, लेकिन हमारे दिलों में भारत जरूर बसता है। तो आज के दिन की ढेरों ढेरों बधाइयां। और कुछ साथी कहते हैं कि आज 79th है, तो आज 79th नहीं, आज 80वां है, क्योंकि जिस दिन हम आज़ाद हुए थे उसको भी तो गिनेंगे ना। तो आज के दिन की आप सबको ढेरों ढेरों बधाइयां। और चलिए आग लगाना एक बार फिर से मेरी ओर से आप सबके लिए।
1: ये है Laika Radio. Across the Laika Radio Network, this is Ritu Sharma. Tasty Track of the Hour, brought to you by Coca Noodles.

सही कह रही हैं स्वीटी कालरा जी आप। मैं जब इस तरह के गाने सुनती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अभी भी मेरा यही हाल है। हम सब देशमय हो गए हैं, भक्तिमय हो गए हैं और आज देशभक्तिमय हो गए हैं और आज हम अपना सेवा स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। और आज के दिन हम सब जानते हैं कि जो देश के रक्षक हैं, जो देश के बहादुर सिपाही हैं, जो देश के बहादुर नागरिक हैं, उन्हें उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए वीरता पुरस्कार भी दिया जाता है। तो आज का नज़ारा जो लाल किले पर होगा, जो परेड होगी, वो बहुत ही देखने लायक होगा। आई एम श्योर आपने घर बैठकर टेलीविजन पर उसका नज़ारा देखा होगा और या कभी आपको मौका लगा होगा लाइव देखने का, तो बहुत ही बढ़िया बात है। आपके ढेरों मैसेजेस मिले हैं, इसलिए आज मैं किसी का

0: ही नाम प्रोग्राम में शामिल नहीं कर पाई हूँ क्योंकि उनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि मैं बता नहीं सकती. तो मुझे बहुत खुशी है और आप सबने कहा है कि यस वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन. ऑफ कोर्स बहुत हमें भारतीय होने पर भी गर्व है और हमें अपने भारत पर भी गर्व है. बस यही कहते रहिए, यही हमारे दिल में रहता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. आप सबको आज के दिन की ढेरों ढेरों बधाइयां और कोशिश करूंगी कि एक और खूबसूरत सा गीत आपको सुनवाऊं. लेकिन उससे पहले
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: तो अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो आप साउथ हॉल ट्रैवल को कॉल कीजिए. उनके पास बड़ी अच्छी डील्स है दुबई जाने के लिए. 0208574810 पर उन्हें कॉल कीजिए. इट ऑल प्रोटेक्टेड है सब कुछ.

0: लता जी की आवाज में मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से था ये गाना, और उससे पहले आपने सुनी किशोर दा की आवाज पल पल दिल के पास तुम रहती हो। और ये गाना धर्मेंद्र ने राखी जी के लिए गाया था, आज जिनकी बर्थडे है। 15 अगस्त 1947 में, यानी कि जिस दिन देश आजाद हुआ था उसी दिन राखी गुलजार का जन्म हुआ था। आज वो 79 इयर्स की हुई हैं और आज की यादें में हम राखी को ही याद करने जा रहे हैं। और इनके बारे में कहा जाता है कि चमकते नैनों वाली ये लड़की एक ऐसी हीरोइन बनी जिसने सभी के दिलों पर अपने जमाने में खूब राज किया। आज जरूर उनके बारे में कुछ बातें आपको बताऊंगी। आज ही के दिन इनका जन्म पश्चिम बंगाल के नाडिया जिले में हुआ था, और कहा जाता है कि इनके जो फादर थे वो जूतों के व्यापारी थे, और जब भारत का बंटवारा हुआ तो ये पश्चिम बंगाल में ही आकर बस गए। राखी जी की शादी बहुत छोटी सी उम्र में कर दी गई थी, जब ये सिर्फ एक टीनेजर ही थी, और इनकी शादी बंगाली फिल्म डायरेक्टर अजय बिस्वास से की गई थी। जितनी आनंद फानन में इनकी शादी हुई थी उतनी ही आनंद फानन में इनकी शादी टूट भी गई। जब ये अपने घर पहुंची तो हर जगह सिर्फ फिल्मों की बातें, यानी कि ससुराल में हर तरफ फिल्मों की ही बातें हुआ करती थी, जो राखी को उस समय बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। लेकिन ये किसको पता था कि आगे जाकर राखी भी फिल्मों से जुड़ेंगी, और ऐसी जुड़ेंगी कि उनका नाता फिल्मों से हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। एक से बढ़कर एक फिल्मों का हिस्सा रही है राखी। एक और ऐसा ही गीत जो क्लासिक है, अमर है, जिसे आप सब सुनना चाहते हैं, सुनवाती हूँ अब से बस थोड़ी ही देर में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज £1 आपको देगा 128.65 भारतीय रुपए, लेकिन याद रखिए ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा by SBI branch online or by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions do apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Leica Radio.
2: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
2: Mega blockbuster Dhurandhar on Star Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
4: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert, featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika, और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया। Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare demontforthall.co.uk
5: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio. Start to

0: एक बहुत ही शानदार फिल्म और उस फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत गाना जो पिक्चराइज किया गया था राखी पर। और विजय जी सही कहना है कि इस गाने के बिना राखी की यादें पूरी हो ही नहीं सकती। और मालती जी आपका ये फेवरेट गीत है और आपके साथ साथ जिनका भी फेवरेट गीत है उन सभी को डेडिकेट करते हैं ये गाना। आज की यादें में हम राखी को याद कर रहे हैं क्योंकि आज उनकी बर्थडे है। शी इज 79 टुडे। और आपको बता दूं कि इनकी जो पहली फिल्म थी वो तो एक बंगाली फिल्म थी वधू वरन, जिसमें ये बहुत ही छोटी थी, सिर्फ 20 साल की थी। लेकिन उसके बाद इनकी एक और फिल्म आई थी, राजश्री प्रोडक्शंस ने इन्हें मौका दिया था जीवन मृत्यु, जिसमें उनके साथ धर्मेंद्र थे और ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी। और इसके बाद तो राखी जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद तो उन्होंने शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, उस जमाने के सभी बड़े हीरो के साथ बहुत सुपरहिट फिल्म्स में काम किया। और राखी एक बहुत ही अच्छी एक्टर मानी जाती थी तभी, जितने भी बड़े बैनर्स थे, चाहे यश चोपड़ा हो, बीआर चोपड़ा हो, सभी ने उन्हें अपनी फिल्मों में काम करने का मौका दिया। एक और गीत सुनवाती हूँ, ऐसा ही बड़ा ही खूबसूरत।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ राखी ने बहुत सारी फिल्में की हैं। इस फिल्म में भी उनके साथ अमिताभ बच्चन ही थे।
1: Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

यस, ये गाना कस्मे वादे फिल्म से लिया था और आज हम यादें में राखी गुलजार को याद कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले बहुत ही छोटी उम्र में उनकी शादी हुई और बाद में शादी टूट भी गई और उसके बाद राखी ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और 70s के आते आते राखी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री बन चुकी थी और स्टैब्लिश कर चुकी थी। लोग उनके कायल थे कि यस, शी इज अ ब्रिलियंट एक्टर। और गुलजार साहब भी उस समय तक अपने आप को एज ए गीतकार, एज ए राइटर और एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर स्टैब्लिश कर चुके थे। ये गुलजार साहब के बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि राखी की दूसरी शादी गुलजार साहब से हुई थी और कैसे हुई थी उनकी पहली मुलाकात। दरअसल कहने वाले कहते हैं कि दोनों की पहली मुलाकात एक फिल्मी पार्टी में हुई थी। गुलजार साहब

0: लगी। और कहा जाता है कि इसका मेन कारण दोनों का करियर था। गुलजार साहब चाहते थे कि राखी शादी के बाद अभिनय छोड़ दें और परिवार पर ध्यान दें, लेकिन राखी उस समय टॉप की हीरोइन थी, वो उनका सबसे अच्छा दौर चल रहा था अभिनय का, और वो अपना अभिनय नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि पहली बार भी वो एक खराब शादी को देख चुकी थी, तो वो अब अपना करियर छोड़ना नहीं चाहती थी। और हुआ क्या, जब फिल्म आंधी की शूटिंग हो रही थी उस समय कुछ हुआ। आप जानते हैं आंधी गुलजार साहब ने बनाई है। कश्मीर में इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी, राखी भी गुलजार के साथ मौजूद थी, लेकिन किसी बात को लेकर दोनों के बीच में इतनी कहा सुनी हो गई, बात इतनी बढ़ गई, लड़ाई झगड़ा हो गया कि उस दिन दोनों ने डिसाइड किया कि वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, और उसी दिन दोनों ने अलग होने का फैसला ले लिया। उनकी बेटी हुई ए मेघना, जिसका नाम है, उसके जन्म के सिर्फ एक साल बाद ही दोनों अलग हो गए। हालांकि दोनों ने एक दूसरे से कभी डिवोर्स नहीं लिया, लेकिन खुलकर कुछ बयान भी नहीं दिया, लेकिन उसके बाद दोनों साथ भी कभी नहीं रहे। चलिए एक और बहुत खूबसूरत सा गीत सुनवाती हूँ, बजेगा आपसे बस थोड़ी ही देर में।
1: दिस इज रितु शर्मा।
2: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।
1: लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट।
0: तो भाई, इस बार का लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट को होस्ट किया है रवि शर्मा ने, और टाइटल है इज गोल्ड रियली द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। आप सुन सकते हैं लाइका एक्स्ट्रा का नया पॉडकास्ट अमेजन, स्पॉटिफाई, यूट्यूब, एप्पल और जितने भी मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से, वहां जाकर।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर द मिडलैंड्स एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Leica Radio.
3: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 LBS सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 rupees से शुरू, और हर्जमैन बटर 20 kg सिर्फ 10.99।
4: फेल्कन कैश एंड कैरी 82A साइज 10 स्ट्रीट वेस्ट लेस्टर LE1 2JU एंड 2A रोल आउट सेल लेस्टर LE5 4UN।

0: जी हाँ, किशोर दा और लता जी की आवाजों में खुदार फिल्म से था ये गाना, और उससे पहले आपने रफी साहब और आशा जी की आवाजों में जुदाई फिल्म का गीत सुना। और इन दोनों गीतों के साथ एक बार फिर से प्रोग्राम का लास्ट एंड फाइनल आवर शुरू हो गया है। आप सभी को मेरी ओर से एक बार फिर से नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार और मोहब्बत भरा सलाम। और आप सुन रहे हैं ऋतु शर्मा को द ऋतु शर्मा शो पर आपके मन पसंद लायका रेडियो नेटवर्क से। और आज है 15 अगस्त, तो सभी को सबसे पहले आज के दिन की देश की आजादी की, स्वतंत्रता दिवस की, इंडिपेंडेंस डे की ढेरों ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं। और आज का इंडिपेंडेंस डे हम फर्स्ट आवर में ही सेलिब्रेट कर चुके हैं, लेकिन आज हरियाली तीज का त्योहार भी है। और आपको बता दें कि अगर आज आप हरियाली तीज मना रहे हैं तो आपको ढेरों बधाइयां। और जो नहीं जानते हैं उनको बता दूं कि हरियाली तीज मुख्य रूप से भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष में मनाई जाती है, और ये सावन के महीने में आती है। आज ही के दिन यानी कि जो तीसरी तिथि होती है उसी दिन मनाई जाती है, और इसे अखंड सौभाग्य, प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। इस दिन से जुड़ी हुई एक छोटी सी कथा है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं जरूर बताऊंगी कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सती रूप में देह त्यागने के बाद माता पार्वती ने भगवान शिव को फिर से पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। माना जाता है कि माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए 107 बार जन्म लिए, लेकिन हर बार उनकी तपस्या अधूरी रही। 108वें जन्म में जब वो पर्वतराज हिमालय के घर तपस्या कर रही थी, उन्होंने हिमालय के जंगलों में बिना अन्न जल ग्रहण किए वर्षों तक शिवजी की घनघोर तपस्या की, और तब सावन के महीने में आज ही के दिन माता पार्वती की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। और इसी दिन देवी पार्वती ने शिवजी से वरदान मांगा कि जो भी सुहागिन स्त्री इस दिन को निष्ठा से व्रत और पूजा करेगी उसका सुहाग हमेशा अखंड रहेगा और कुमारी कन्याओं को मनचाहा वर प्राप्त होगा। तो ये त्योहार कुमारी कन्याएं भी और शादीशुदा महिलाएं भी बड़ी धूमधाम से मनाती हैं। आज के दिन खूब सज धज, यू नो, फुल ऑन मेकअप, खूब सारी चूड़ियां, भारी भरकम साड़ियां, मेकअप, ज्वेलरी, यू नो, सब कुछ पहनने का दिन है। तो मजे के साथ आज का त्योहार मनाइए और हमारी ओर से आपको आज के दिन की बधाइयां। सो हैप्पी हरियाली तीज। और अब बात कर लेते हैं आज के इस वाले आवर की। इस आवर में मैं आपको कुछ ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक सुनवाती हूँ और हम खेलते हैं थ्री वर्ड्स गेम। तो तैयार है आज के गेम के लिए? चलिए फिर। तो आज के जो तीन वर्ड्स हैं जिनकी मदद से आपको गाना पहचानना है, पहला वर्ड है वादा, दूसरा वर्ड है दिल रुबा और तीसरा वर्ड है रहूंगा। बहुत पॉपुलर गाना है, मुझे पता है आप यू चुटकियों में पहचान लोगे। ये फिल्म आई थी 1981 में, कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक है, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें हैं। फिर से मैं वर्ड रिपीट कर देती हूँ, पहला वर्ड है वादा, दूसरा वर्ड है दिल रुबा और तीसरा वर्ड है रहूंगा। कौन सा है ये गाना, कुछ समझ आ रहा है? चलिए फिर, अगर आपको पता चल रहा है तो देर किस बात की है, भिजवाइए अपना आंसर हमारे इस नंबर पर।
1: WhatsApp Leica Radio Midlands now on 07404-793-719.
0: तो एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ वर्ड्स, पहला वर्ड है वादा, दिल रुबा, रहूंगा। 1981 की फिल्म, कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक और मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें। कौन सा है ये गाना?
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज 1 pound आपको देगा 128.65 भारतीय रुपए, और याद रखिए ट्रांसफर आपको करवाना होगा वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस भी लागू रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester, and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
2: ये है लाइका रेडियो।
1: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
1: Mega blockbuster Dhurandhar on Star Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
4: Leicester's iconic hot potato shop is now serving up fresh flavour at Foss Park. After 45 years on Belgrave Road, we've rolled in with another brand new Airstream trailer, serving piping hot loaded jacket potatoes and fresh cut chips made to order. Open 7 days a week with generous portions and unbeatable taste. Find us outside M&S next to the Barclays Hub. Look for the shiny Airstream and grab your favourite today. Hot potato shop, now at Foss Park.
5: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
6: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
5: Southall Travel.
7: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
5: Southall Travel can take you there.
8: Southall Travel, at all protected.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location.
9: High appreciation.
10: In Dubai.
9: Leicester na Little Garba Stars taiyar thai jao. KDR Events and Beach Promotion proudly presents Kids Garba 2026 with Live from India. Saturday 17th October, Bapore 1 thi 4 at Avanti Field School, Leicester. 1 thi 10 varsh na kids mate entry just £5. Tickets available from Ticket Source or call PHL 07957477330. Masti, music and a full on Garba fan. Radio partner, Leica Radio.

0: लीजिए लता जी के आवाज में ये गाना हमारी तोशी जी के नाम पर करते हैं और उनके साथ साथ उन सभी लिसनर्स के नाम जाता है जिन्हें ये गाना पसंद है, क्योंकि इस बार की हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक है लता मंगेशकर। तो ऐसे गाने आप लगातार सुन ही रहे हैं और लता जी की आवाज के बिना भला कोई शो हो सकता है, स्पेशली हमारे यहाँ क्लासिक वाला। एनीवेज, थैंक यू सो मच, आप हमारा साथ दे रहे हैं। और आपको बता दें कि ऐसे ही 90s के और भी सुपर हिट गीत आप सुन सकते हैं, क्योंकि 90s बॉलीवुड लेजेंड उदित नारायण लंदन आ रहे हैं विद सन आदित्य नारायण एट ओवो अरीना वैमली ऑन संडे 20th December। टिकट्स अवेलेबल है टिकट मास्टर एंड AXS पर, और इस प्रोग्राम के एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स है लाइका रेडियो नेटवर्क।
1: ये है लाइका रेडियो फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली,
2: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग। डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स। विजिट dairyvalley.net।
0: तो लीजिए लता जी के आर्टिस्ट ऑफ द वीक वाले गाने के बाद अब शुरुआत करते हैं आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक की। पहला गाना लता जी की आवाज में फिर से, और थ्री वर्ड्स गेम भी चल रहा है, आपके ढेरों आंसर्स मिले हैं और किन्होंने गाने को सही सही पहचान लिया है बताती हूँ ना, पहले सुनते हैं इस गाने को।

0: जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत सा गाना। और हमारे साथी बिल्कुल भी अनाड़ी नहीं है, बहुत ही अच्छी नॉलेज रखते हैं। और आप सब पहचान गए हैं कि शंकर जयकिशन का म्यूजिक है। और ये था हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का पहला गाना। और आपके ढेरों ढेरों ढेरों मैसेजेस मुझे मिले हैं, और कमाल की बात यह है कि अब तक किसी ने भी गलत जवाब नहीं दिया। और इसीलिए मैंने कहा था कि गाना बहुत ही प्यारा है और आप सबको पसंद है और आप सब फौरन पहचान जाओगे, और वही हो रहा है। तो बताऊंगी किन साथियों ने सही जवाब दे दिया। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि भाई न सिर्फ गीत आप सुन सकते हैं बल्कि हंसने हंसाने का भी इंतजाम है। अब देखिए, जब कपिल शर्मा का शो आता है तो अगर उसमें सुनील ग्रोवर, कृष्णा अभिषेक ना हो तो अधूरा लगता है। सुनील ग्रोवर खास तौर पर जब नहीं थे कपिल शर्मा शो में तो लगता था अरे कुछ कमी है। तो अब सुनील ग्रोवर लंदन आ रहे हैं। जी हाँ, आप उन्हें लाइव परफॉर्म करते हुए देख सकते हैं। आपको बता दें, कॉमेडी जीनियस सुनील ग्रोवर लाइव परफॉर्म करेंगे लंदन में एट ओवो एरिना वेम्बली ऑन थर्सडे 29th अक्टूबर। डेट नोट कर लीजिए, थर्सडे 29th अक्टूबर एंड लेस्टर एट मेटियोली एरिना ऑन सैटरडे 31st अक्टूबर। टिकट्स खरीदने के लिए आप टिकट्स ले सकते हैं AXX पर, इवेंट ब्राइट पर एंड टिकट मास्टर जैप पर जाकर। और इसके एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स हैं यस हम, यानी कि लाइक अ रेडियो नेटवर्क।
1: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली।
2: हैप्पी हलवाई ब्रिंग्स योर टेस्ट बड्स ओडल्स ऑफ हैप्पीनेस विद ऑथेंटिक गुलाब जामुन, रसमलाई, मोतीचूर लड्डू एंड मच मोर। विजिट happyhalwai.com।
0: चलिए अब आपको सुनवाते हैं आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना।
1: दिस इज रितु शर्मा, द रितु शर्मा शो ऑन लाइका रेडियो।
3: दिस सुपर हिट ट्रैक इज ब्रॉट टू यू बाय टिल्डा बासमती राइस। विद अ रेंज ऑफ ग्रेन्स एंड फ्लेवर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, यू कैन मेक एवरी मील मेमोरेबल।

0: the Track of the Hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: Leica Radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: तो आज £1 आपको देगा 129 भारतीय रुपए, 375 पाकिस्तानी रुपए and 166 बांग्लादेशी टका.
3: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Leica Radio across the Midlands. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
2: तो वन पाउंड के बदले में आज आपको मिलेंगे 104.2 भारतीय रुपए, 1 ग्राम गोल्ड की कीमत है आज 104.23.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
2: तो लीजिए, अब जाने का समय आ गया है. अगला गीत लेकर चलेगा न्यूज तक, और न्यूज के उस पार आपका साथ देंगे आज लाइका गोल्ड पर अनुराग, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर पर जय सिटिंग इन फॉर फजीला, एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर आनंदी आपके साथ होंगी. मैं आपसे कल फिर से मिलूंगी. अपना बहुत सा ख्याल रखिए. एक बार फिर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड हैप्पी तीज. सी यू टुमारो.
1: लाइका रेडियो.
3: Leica
1: Radio. This part of the show is brought to you by Star Plus,
3: previously known as Utsav Plus.
1: Sky Channel 705, Virgin Media 803 and BT 392.
3: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping का परफेक्ट डेस्टिनेशन. राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फैल्कन स्टोर्स पर. ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग भी शुरू हो चुकी हैं. फैल्कन स्नैक्स 300 ग्राम की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच. मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 LBS सिर्फ 13.49. सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99. टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96. एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99 से शुरू. और हर्जमन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99. फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE1 2JU एंड 2A रोलॉट सेल लिस्टर LE5 4UN. You know how UK weather can do full drama with our hair. One day frizz, one day flat. That's why I switched to Siddhayu Hair Oil. It's proper premium light, non-sticky and made with real Ayurvedic herbs. Mum loves it because it's traditional. I love it because it actually works. Stronger roots, less hair foil and that healthy shine you notice straight away from the house of Baidyanath with over 100 years of Ayurvedic legacy.
1: Siddhayu, now available at Deepak Foods Thornton.
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागा सन.
5: आई है फिर से हैप्पी वाली फीलिंग लेके दिवाली.
3: It's back and it's bigger.
1: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Ram Jewelers.
3: On Sunday, 1st November 2026 at the Ram Garia Centre.
1: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803 240580 or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
3: Exclusive charity partner, Go Dharmic.

0: Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
2: फोन 0208574 8410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
4: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
3: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
5: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
6: भोजपुरी बवाल।
7: पवन जी, मैंने सुना है आप दोनों के रिलेशन अच्छे नहीं है।
8: आप सीधे सीधे आरोप लगा रही हो।
9: कहां सही झगड़ा चला था भाई।
10: द ब्रांड न्यू रियलिटी टीवी शो भोजपुरी बवाल, मंडे टू संडे एट 10 PM ऑन कलर्स टीवी।
11: 89% of UK customers check online before they spend. If they don't find you, they won't choose you. Go digital. Visit heartyhanks.com now. Hearty Hanks. Facts don't lie. Results don't wait. Visit heartyhanks.com now.
12: It was just another day. A familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is,

0: दो गीत सुने आपने बैक टू बैक, उम्मीद करती हूँ दोनों के दोनों गीत आपको पसंद आए। पहला गीत मैंने फिल्म रोजा से चुना था, 1992 की फिल्म, और दूसरा गीत पूरब और पश्चिम से था जिसमें आवाज आपने सुनी महेंद्र कपूर साहब की। और दोनों ही गीत हमें अपने वतन की याद दिलाते हैं। आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये 15 अगस्त हमारे दिलों की धड़कन है, इंडिपेंडेंस डे। 1947 की वो सुबह जब सूरज थोड़ा अलग सा चमका था, हवा में एक नई उम्मीद थी, एक नया जोश था और एक आवाज़, आज़ादी की आवाज़। इस आवाज़ को पाने के लिए कितने ही लोगों ने अपनी ज़िंदगी, अपने सपने, अपना सब कुछ देश के नाम कर दिया था। कहते हैं फ्रीडम इज़ नेवर फ्री, यस, हमारी आज़ादी लोगों लाखों लोगों की कुर्बानी का नतीजा रही है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हमारा नेशनल फ्लैग, हमारा प्यारा सा तिरंगा, इसकी डिज़ाइन फ्रीडम फाइटर पिंगाली वेनेक्यार ने की थी, बनाई थी। और तिरंगे के तीन रंग सिर्फ रंग नहीं है, एक फिलॉसफी है, केसरिया साहस, सफ़ेद शांति और हरा विकास का रंग है, और बीच का अशोक चक्र निरंतर प्रगति का वादा है, तरक्की का वादा है। आज आज़ादी सिर्फ एक गिफ्ट नहीं हमें मिली है, एक जिम्मेदारी भी मिली है। हम सब का फ़र्ज़ है कि हम अपने देश, अपनी संस्कृति, अपनी वैल्यूज़ को सम्मान दें, चाहे हम इंडिया में हों या इंडिया से बाहर रहते हों, किसी भी कोने में रहते हों। इंडिया हमारे में ज़रूर बसना चाहिए, इंडिया लिव्स इन अस। तो आज एक छोटा सा मैं सैल्यूट उन सब हीरोज़ के नाम, जाने पहचाने और अनजाने, जिनकी वजह से हम आज खुलकर सांस ले पाते हैं। तो मैं आपके साथ हूँ और प्रोग्राम के इस आवर में कुछ एक गाने मैं पेट्रियाटिक आपके साथ शेयर करूँगी, उम्मीद करती हूँ कि आप पसंद करेंगे। आइए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं।
1: Sarita Summerwall with the biggest classics on Leica Radio. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK के जरिए अगर आप पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं इंडिया में कहीं भी, तो आज आपका 1 ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड कैन गेट यू अप टू 128 रुपीस। डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच, ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप के जरिए। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on Leica Radio. Leica Radio.
2: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
2: Mega blockbuster Dhurandhar on Star Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu. Prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: You know how UK weather can do full drama with our hair. One day frizz, one day flat. That's why I switched to Siddhayu Hair Oil. It's proper premium, light, non-sticky and made with real Ayurvedic herbs. Mum loves it because it's traditional. I love it because it actually works. Stronger roots, less hair foil and that healthy shine you notice straight away from the house of Bedianath with over 100 years of Ayurvedic legacy.
7: Siddhayu, now available at Deepak Foods Thornton Heath.
8: I happen to happy Wali feeling like Diwali.
6: It's back and it's bigger.
7: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Vam Jewelers.
6: On Sunday, 1st November 2026 at the Ramgarhia Centre.
7: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803-240580 or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
6: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
9: खाखरा क्रंच, भाखरी मंच, चिक्की स्वीट, पाप
4: पेपर बीट पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
9: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर।
4: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
10: नवरात्रि धमाकेदार रातों माटे थई जाओ रेडी। KDR इवेंट्स एंड बीच प्रमोशंस प्राउडली प्रेजेंट्स नवरात्रि फेस्टिवल 2026 11th to 20th October लाइव फ्रॉम इंडिया। गरबा, डांडिया, म्यूजिक एंड फुल ऑन फेस्टिव वाइब्स एवरी नाइट फ्रॉम 7 PM एट अवंती फील्ड स्कूल लिस्टर। टिकट्स जस्ट £5 दी स्टार्ट। बुक योर टिकट्स नाउ ऑन टिकट सोर्स और कॉल बीजे 07957477330। रेडियो पार्टनर लाइक अ रेडियो।
11: Leica Radio launches Birmingham wide on DAB from September 1st.
12: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English but louder.
13: 4 beers, please, garçon!
12: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
14: You're both on the same road. Same tarmac, same rules. Just a different number of wheels. Motorbikes aren't in your way. They're on their way, just like you. So use your mirrors. Check before you manoeuvre. And be aware of motorbikes. Because when we look out for each other, everyone gets where they're going safely. Motorbike safety. It's on all of us. National Highways.
11: Listen back to your favourite shows by logging on to LeicaRadio.com and selecting Midlands or the mobile app. Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favourite shows.
15: लगन लग तुमसे मन के लगन, लगन लग तुमसे मन के लगन, लगन लग तुमसे मन।
16: आपका नया स्टेशन Leica Radio Ghazals बहुत जल्द आ रहा है।
11: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
17: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: ये देश है वीर जवानों का, दिलों का मस्तानों का, कितना प्यारा गीत है। और ऐसे गीत सुनकर अपने आप ही दिल में देश प्रेम की भावना जागृत होती है। आज़ादी की खुशबू आज भी जैसे हवा में घुली हो, तिरंगे की शान आज भी दिल में बसी है। कुर्बानियों की दास्तां यूं ही नहीं लिखी गई हैं, ये मिट्टी हर कदम पर हीरों की जो हीरोज थे उनकी गवाही देती है। वो हीरोज जिन्होंने अपनी जान दी इस वतन के लिए, इस आज़ादी के लिए। 15 अगस्त का सूरज आज थोड़ा ज़्यादा चमकता है, हर दिल में फ्रीडम का रंग गहराता है। हम चाहे जहाँ भी रहें, किस भी मुल्क में रहें, लेकिन हमारा दिल हिंदुस्तान से जुड़ा रहता है, हमारी धड़कन वहीं पर है। वो रातें, वो संघर्ष, वो उम्मीदें सब याद हैं, वो जज्बा, वो हिम्मत, वो सपने सब आबाद हैं। आज तिरंगा देखकर बस एक ही एहसास उठता है, हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हमेशा रहेंगे। ऐसा ही प्यार सबका बना रहे अपने वतन के साथ। ये गीत आप तक पहुंचाया था डेरी वैली वालों ने, और अगला गीत भी आ रहा है बहुत ही खूबसूरत सा, सुनते रहो।
1: Feel good track brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Leica Radio.
3: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: से प्यार होता है और सभी के वतन के लिए हम यही कहेंगे आप सभी को अपने वतन की फ्रीडम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। कल हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों ने भी यौम आज़ादी मनाई तो उन्हें भी मैं बिलेटेड ज़रूर कहना चाहूँगी कि यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये गीत आप तक पहुँचाया किसने? कोका नूडल्स वालों।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
2: Sarita Sabharwal with your weekend classics.
0: जी हाँ, सरिता ही है आपके साथ। और अब बता दूं कि बाकी के इस आवर में मैं याद करने जा रही हूँ विद्या सिन्हा जी को, उनकी अदाकारी को, जिन्होंने बिना शोर शराबे के सिर्फ अपनी मुस्कान और सिंप्लिसिटी से पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया था। पहला गीत मैंने चुना है फ्रॉम द फिल्म रजनीगंधा। उम्मीद करती हूँ आप पसंद करेंगे। इट्स कमिंग आफ्टर दीज वर्ड्स।
3: Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
4: ये है Leica Radio,
5: one performer.
6: टीवी के सामने तो प्रोसम से कहने क्या पहनी है तुमने साड़ी भैया, खिलाड़ियों के खिलाड़ी।
7: Countless personalities.
8: जिंदगी बर्बाद हो गया।
9: A whole universe of entertainment.
10: Brandon में function रखा हुआ है।
11: Sunil Grover live UK tour 2026.
12: 29th October, Ovo Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
13: From Gutti to Dr. Mashur Gulati, from Rinku Bhabhi to brand new surprises, experience Sunil Grover live on stage in the UK.
14: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
15: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
16: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
17: History divided a nation but could never divide humanity.
18: कौन सी आजादी और किसका मुल्क?
17: Witness the epic reunion of Sunny Deol and Rajkumar Santoshi in Batwara 1947.
19: वो माँ है माँ, माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए।
17: Starring शबाना आजमी, Priti Zinta, Karan Deol and Ali Fazal.
19: हर बच्चे के मुंह से निकला पहला लफ्ज माँ है।
17: Produced by Aamir Khan. Experience the untold story of courage and hope. Batwara 1947. Now in cinemas.

0: गीत आपने सुना, मुझे उम्मीद है पसंद भी आया होगा। फिल्म का नाम था छोटी सी बात, एंड छोटी सी बात में काम किया था किसने, इस फिल्म में थे अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा, उनके साथ अशोक कुमार एंड असरानी भी थे। बासु चैटर्जी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था एंड इस फिल्म का संगीत दिया था सलील चौधरी ने। इस गीत में दो आवाज़ें जो आपने सुनी, बहुत प्यारी आवाज़ थी यसुदास जी की और साथ दे रही थी आशा भोसले, और इस गीत को योगेश जी ने लिखा था एंड ऑब्वियसली अमोल पालेकर एंड विद्या सिन्हा पर ये गाना पिक्चराइज हुआ था। विद्या सिन्हा बहुत ही प्यारी सी और सिंपल सी हीरोइन थी, स्पेशली रजनीगंधा में उनका बहुत पसंद किया गया था। 1970s का वो दौर जब बड़े बड़े स्टार्स के बीच एक लड़की आई जो ना ग्लैमरस थी ना लाउड थी, बस एकदम रियल थी, और शायद इसीलिए रजनीगंधा और छोटी सी बात जैसी फिल्मों में उनके चार्म दिल को छू जाता है। विद्या सिन्हा ने हमें सिखाया कि हर कहानी को हीरो नहीं चाहिए, कभी कभी एक सच्चा इंसान ही काफ़ी होता है, और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस में एक अजीब सी शांति थी, एक सॉफ्टनेस थी जैसे किसी शहर की सुबह की हवा चलती हो। बासु चैटर्जी के सिनेमा का वो हल्का फुल्का एवरीडे लाइफ का मैजिक विद्या सिन्हा के बिना अधूरा रह जाता। बहुत प्यारी फिल्म थी, और उसके बाद उन्होंने कुछ टेलीविज़न पर भी काम किया था, तो वहाँ भी वही ग्रेस लेकर वो कभी भाभी में आई, भाभी में आपने उन्हें देखा, काव्यांजलि में थी, कबूल है में थी, और हर जगह उनकी प्रेजेंस एक अलग सी वॉर्म्थ लाती थी। विद्या सिन्हा जी को हमने याद किया आज ही प्रोग्राम के इस आवर में। उम्मीद करती हूँ जो गाने मैंने चुने आपको पसंद आए हैं।
1: सरिता सबरवाल विद द बिगेस्ट क्लासिक्स ऑन लाइका रेडियो।
0: और अगला गीत मैंने बहुत ही प्यारा सा चुना है फ्रॉम द फिल्म पति पत्नी और वो, और इस फिल्म में भी काम किया था हमारी विद्या सिन्हा जी ने ही, बी आर चोपड़ा साहब ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। विद्या सिन्हा जी के साथ थे संजीव कुमार एंड रंजीता, एंड असरानी भी इस फिल्म का हिस्सा थे। रविंद्र जैन जी ने संगीत तैयार किया था एंड गाने लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने। वो गीत हमें पहुंचा देगा न्यूज़ तक, न्यूज़ के उस पार मैं सरिता आप ही के साथ रहूँगी, इसलिए कहीं नहीं जाना, मेरा साथ इसी तरह से देते रहिएगा।
2: This part of the show is brought to you by Star Plus,
3: previously known as Utsav Plus,
2: Sky Channel 705, Virgin Media 803 and BT 392.
4: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 LBS सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ £1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ £29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 rupees से शुरू, और हर्ज़मैन बटर घी 20 kg सिर्फ £10.99। फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लेस्टर LE12JU एंड 2A रोल आउट सेल लेस्टर LE54UN।
5: लेस्टर तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्ले बैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया। Sunday, 27th of September, Dumontford Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare, dumontfordhall.co.uk
6: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 0786-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
7: Start

0: क्या बात है, दो गीत आपने सुने, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, करण अर्जुन से चुना था मैंने इस गीत को, और माय नेम इज लखन फ्रॉम द फिल्म राम लखन से। उम्मीद करती हूँ दोनों गीत आपके मन को जरूर भाए होंगे। इन गीतों के जरिए हमने याद किया किसे, राखी जी को भी। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी अदाकारा की जिनकी आंखों में गहराई है, जिनकी आवाज में सच्चाई और जिनकी अदाकारी में एक अनोखी सी शालीनता रही। वेरी काम राखी गुलजार, आप सभी उनके नाम से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं, उनकी प्यारी सी आंखें और मुस्कान। 1970s और 80s का वो सुनहरा दौर जब पर्दे पर ग्लैमर और ड्रामा दोनों का बोलबाला था, दोनों का जलवा था, वहीं राखी जी ने अपनी अंडरस्टेटेड पावरफुल परफॉर्मेंसेस से एक अलग सी पहचान बनाई। दाग, तपस्या, कभी कभी, मुकद्दर का सिकंदर, शर्मीली, हर फिल्म में वो एक नई परत लेकर आती रहीं, कभी नर्म, कभी मजबूत, कभी टूटती हुई तो कभी पहाड़ जैसी अड़िंग। तो आज थोड़ी सी बातें करेंगे हम इस आवर में राखी जी के बारे में, उनको बर्थडे की बहुत बहुत बधाई देते हुए।
1: This is Sarita Sabharwal on Leica Radio. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK के जरिए अगर आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं इंडिया में कहीं भी, तो आज आपको 1 British Sterling Pound can get you कितने पैसे, 128 रुपीस। सो भूलिएगा नहीं कि यू कैन एक्सचेंज मनी इन द ब्रांच ऑनलाइन या SBI योनो मोबाइल ऐप के जरिए। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीस एंड सीज अप्लाई। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर द मिडलैंड्स एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co. Sarita Sabharwal with the biggest classics on Leica Radio.
2: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
2: Mega blockbuster Dhurandhar on Star Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
4: लेस्टर फाल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फाल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फाल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 LBS सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 rupees से शुरू। और हर्जमैन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99।
5: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइज 10 स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE54UN।
6: कुछ शामें कैलेंडर में नहीं, दिल में हमेशा के लिए बस जाती हैं। इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लेकर आ रही हैं एक यादगार म्यूजिकल इवनिंग लाइव इन कॉन्सर्ट। Saturday the 5th of September at the Platinum Suite Leicester. Apni seats aaj hi reserve kijiye. For more information call Mr. B on 07860280655. Exclusive radio partner Leica Radio Network.
7: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turn this classic panto tale on its head and give it an exciting Desi twist.
8: Be sure to catch the show across the Midlands, the Belgrade Theatre Coventry, Thursday the 16th to Sunday the 19th of July, and at the Crescent Theatre Birmingham, Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September, and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October.
7: Click rifkotheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight.
9: Leicester's iconic hot potato shop is now serving up fresh flavour at Foss Park. After 45 years on Belgrave Road, we've rolled in with another brand new Airstream trailer, serving piping hot loaded jacket potatoes and fresh cut chips made to order. Open 7 days a week with generous portions and unbeatable taste. Find us outside M&S next to the Barclays Hub. Look for the shiny Airstream and grab your favourite today. Hot Potato Shop, now at Foss Park.
10: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
11: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
12: Mum always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care, Siddhayu. Now available in Falcon Cash and Carry, Leicester and Nottingham. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
13: Pepe's Piri Piri is firing up its 258th store at 3 Tons Parade on Stafford Road, Wolverhampton. Get ready for flame-grilled chicken, mouth-watering burgers, wraps, rice boxes, and the bold Pepe's flavor you love. Now serving at Wolverhampton 3 Tons Parade. Pepe's Piri Piri. Taste the flame.

0: बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपने सुना फ्रॉम द फिल्म शर्मिली, और शर्मिली में शी लुक्ड सो प्रिटी एंड शी डिड अ डबल रोल इन दैट फिल्म. और इन्हें दो दफ़ा नेशनल फिल्म अवार्ड मिला, 3 times शी रिसीव फिल्म फेयर अवार्ड फॉर हर एक्टिंग, एंड इन 2003 शी रिसीव पद्मश्री, इंडियाज 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. इसके अलावा इन्होंने जीवन मृत्यु में बहुत प्यारा काम किया था, एंड इनका टर्निंग पॉइंट था वो इनकी करियर का. उसके बाद आंखों आंखों में, दाग, अ पोयम ऑफ लव. दाग में कोई भी गाना इन पर पिक्चराइज नहीं हुआ था, लेकिन बहुत प्यारी फिल्म थी. और उम्मीद करती हूँ आपने देखी होगी, शर्मिला टैगोर थी एंड राजेश खन्ना थे उस फिल्म में. और दाग के लिए, फॉर विच शी वन द फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस एंड 27 Down 1974 की फिल्म में शी वन द फर्स्ट and only Filmfare Award for Best Actress for Tapasya in 1976. इसके अलावा Blackmail, कभी कभी, दूसरा आदमी, तृष्णा, मुकद्दर का सिकंदर, ऐसी बहुत सी फिल्मों में इन्होंने काम किया. काला पत्थर, जुर्माना, बरसात की एक रात, शक्ति, रामलखन. तो उम्मीद करती हूँ कि आज के प्रोग्राम का अगला गीत भी आप ज़रूर पसंद करेंगे जो मैंने चुना है फ्रॉम द फिल्म Blackmail.
1: Feel Good Track brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Sarita Sabawal.
0: चलिए भी आपको जल्दी से बता दें कि उदित नारायण और आदित्य नारायण दोनों आ रहे हैं कब, संडे 20 December को, और परफॉर्म करेंगे ओवो अरीना वेम्बले में. आदित्य नारायण एंड उदित नारायण दोनों एक साथ स्टेज पर. टिकट्स अवेलेबल फ्रॉम टिकट मास्टर एंड AXS. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है लाइक अ रेडियो नेटवर्क. और सुनील ग्रोवर भी तो आ रहे हैं ओवो अरीना वेम्बले में ही, ऑन थर्सडे 29 October एंड लेस्टर एट मैरियट अरीना on Sunday 31st October. Tickets आप ले सकते हैं AXS से, Eventbrite and Ticketmaster से. Exclusive radio partner कौन है? Leica Radio Network.
1: This is Leica Radio across the Midlands.

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने. पहला गीत आपने सुना फ्रॉम द फिल्म और प्यार हो गया. राहुल रवील साहब ने बनाई थी ये फिल्म, उन्होंने डायरेक्ट की थी और स्क्रीन प्ले लिखा था हनी ईरानी ने. इस फिल्म में काम किया था बॉबी देओल ने, साथ में थी ऐश्वर्या राय, शम्मी कपूर, अनुपम खेर, बीना एंड शम्मी. और इस फिल्म की खासियत ये भी है कि इस फिल्म का संगीत दिया था नुसरत फतेह अली खान साहब ने और सारे गाने बड़े मशहूर हुए थे एंड जावेद अख्तर साहब ने इन गीतों को लिखा था. मेरी सांसों में बसा है एक नाम, बहुत प्यारा गीत था. एक दिन कहीं दो तुम मिले और उसके बाद हमसे रहोगे क्या हमेशा खफा, पर मैंने चुना ये वाला गीत जो उम्मीद करती हूँ आपने पसंद भी किया. मेरी सांसों में बसा है एक नाम, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा आपको. और दूसरा गीत मैंने चुना था फ्रॉम द फिल्म शोले. शोले रमेश सिप्पी साहब ने बनाई थी और प्रोड्यूस की थी जी पी सिप्पी साहब ने. धर्मेंद्र, संजीव कुमार, हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन एंड अमजद खान इस फिल्म का हिस्सा थे. आर डी बर्मन साहब का बड़ा ज़बरदस्त संगीत था और सारे गाने इस फिल्म के भी बहुत मशहूर हुए थे. और ये दो गीत मैंने इसलिए शामिल किए कि ये दोनों फिल्में आज ही के दिन रिलीज़ हुई. शोले रिलीज हुई थी 15 अगस्त 1975 में, तो और प्यार हो गया रिलीज हुई थी 15 अगस्त 1997 में. आपने ये फिल्म कब देखी थी अगर बताना चाहें, लिखना चाहें तो लिखिएगा, मैं कल आपके सभी मैसेजेस का जवाब ज़रूर देने की कोशिश करूँगी. अपना ध्यान रखिए और इन्जॉय करते रहिए. हम इन्जॉय कर रहे हैं इस वक्त मेले में, यस, पर ये प्रोग्राम मैं अर्लियर ऑन आपके लिए रिकॉर्ड करके गई.
1: Radio. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India के जरिए अगर आप पैसे इंडिया में कहीं भी ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो काम बहुत आसान है. You can go in the branch, you can go online और SBI Yono mobile app के जरिए आप पैसे ट्रांसफर करा सकते हैं. Terms and conditions apply करती हैं और आज एक पाउंड के बदले आपको मिल सकते हैं up to 128 rupees.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Sarita Summerwall with the biggest classics on Leica Radio. This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
2: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
1: Mega blockbuster Dhurandhar on Star Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.

0: हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक रही लता जी, और लता जी की आवाज़ में इतने गाने हैं कि एक गाना चुनना बहुत मुश्किल था, तो इसलिए मैंने फिल्म गाइड का गीत आप तक पहुंचाया इस उम्मीद पर कि आपने ज़रूर इंजॉय किया होगा।
1: Brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: महेंद्र कपूर साहब की आवाज मुझे बहुत पसंद है, उनसे मिलने का भी मौका मिला, उनके बेटे रोहन से भी, और बहुत अच्छे इंसान थे महेंद्र कपूर साहब एंड डाउन टू अर्थ। तो उनकी आवाज में गाया हुआ ये गीत मैंने सुना था फ्रॉम द फिल्म जब याद किसी की आती है। होप यू एंजॉय।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com. Like
3: radio. This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes. This is Leica Radio across the Midlands. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: चलिए आपको करेंसी रेट बता दें. एक पाउंड के बदले आज आपको मिल सकते हैं इंडियन करेंसी 129 रुपीस एंड 40 पैसा, पाकिस्तानी रुपीस 375.63, बांग्लादेशी टका 166.2 एंड श्रीलंकन रुपीस 450.3.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Summerwall with the biggest classics on Leica Radio. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
1: Gold ka rate is wet market mein 104 pounds and 16 pence per gram.
0: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
3: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड. मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड. रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे 10 to 1 PM.
0: सरिता सबोवा.
1: ये था आज का प्रोग्राम. उम्मीद करती हूँ कि आपने पसंद किया. एक और गीत है वो भी बहुत सुंदर है, आप पसंद करेंगे, गुनगुनाएंगे उस गीत के साथ साथ और मुझे इजाजत देंगे माइक्रोफोन के इस तरफ से. कल फिर मुलाकात होगी और कल भी एक अच्छा सा प्रोग्राम आपकी सेवा में लाने की मेरी जरूर कोशिश रहेगी अगर जिंदगी ने साथ दिया. आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा. इसी तरह से लाइका रेडियो नेटवर्क के सभी प्रोग्राम सुनते रहिए. मेरी बात आ रहे हैं यहाँ पर दिशा, तो आप मैनचेस्टर में सुन पाएंगे अंकुर को. और दूसरी तरफ आ रही है सोनिया. चलिए अब मैं जाती हूँ और कल आने का वादा अगर जिंदगी ने साथ दिया. बाय बाय, टेक केयर, हैव ए लवली एंड सुपर्ब इवनिंग.
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
4: This part of the show is brought to you by Star Plus,
5: previously known as Utsav Plus,
4: Sky Channel 705, Virgin Media 803 and BT 392. One performer.
5: Countless personalities. A whole universe of entertainment. Sunil Grover, live UK Tour 2026.
4: 29th October, OVO Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
5: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabhi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK.
4: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
5: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
4: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
7: आफ्टर द स्मैश हिट रन इन 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bungala and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic panto tale on its head and give it an exciting Dizzy twist.
8: Be sure to catch the show across the Midlands, the Belgrade Theatre Coventry, Thursday the 16th to Sunday the 19th of July, and at the Crescent Theatre Birmingham, Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September, and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October.
7: Click rifkotheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight.

0: last part of the show is brought to you by Star Plus.
1: Previously known as Utsav Plus.
0: Sky Channel 705, Virgin Media 803 and BT 392.
1: Lester Falcon Cash and Carry Festive Shopping का परफेक्ट डेस्टिनेशन राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी Falcon स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। Falcon स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 LBS सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ £1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ £29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 rupees से शुरू और हर्ज़मैन बटर घी 20 kg सिर्फ £10.99।
2: Falcon Cash and Carry 82A Syston Street West Leicester LE1 2JU and 2A Rollout Sale Leicester LE5 4UN. Start.

0: is Leica Radio across the Midlands.
1: This part of the show is brought to you by Brendan.
2: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
1: Mega blockbuster Durandar on Star Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
3: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping का perfect destination. राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी Falcon stores पर. ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं. Falcon snacks 300 grams की फुल रेंज सिर्फ £1.99 each. मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 LBS सिर्फ £13.49. सुहाना खमन ढोकला 500 grams सिर्फ £1.99 each या 2 for £2.99. टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ £29.96. एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99p से शुरू और हर्जमन बटर घी 20 kg सिर्फ £10.99.
4: Falcon Cash and Carry 82A Syston Street West Leicester LE1 2JU and 2A Rollout Cell Leicester LE5 4UN.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
6: कुछ लोगों की कहानियाँ उनकी मर्जी से खत्म नहीं होती.
7: A story of love, redemption and second chances returns to the big screen.
8: Dard se purana rishta hai mera.
7: Imran Hashmi is back in the much awaited sequel Awarapan 2.
8: Is baar ya to ye awarapan khatam hoga ya main.
7: Witness powerful emotions, breathtaking action and a soundtrack that stays with you long after the credits roll. Now in cinemas. For your nearest cinema listings, visit Bakronia Media on Instagram.
9: Pepe's Piri Piri is firing up its 258th store at 3 Tons Parade on Stafford Road, Wolverhampton. Get ready for flame-grilled chicken, mouth-watering burgers, wraps, rice boxes, and the bold Pepe's flavor you love. Now serving at Wolverhampton 3 Tons Parade. Pepe's Piri Piri. Taste the flame.
10: Punjab, the biggest tunes.

0: Mica Radio. This part of the show is brought to you by Star Plus.
1: Previously known as Utsav Plus.
0: Sky Channel 705, Virgin Media 803 and BT 392.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
3: देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग
2: डेजर्ट सफारी
3: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
2: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
3: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल एट होम प्रोटेक्ट। Did.

0: ये है लाइका रेडियो।
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-396-3-5757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान। फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
4: साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
5: नाम क्या
6: है? हमदानी मजारी।
7: दूरंदाज 15th and 16th of August at 9 PM on Star Gold. Title sponsor Watchdog Security. Associate sponsor Lemfi.
8: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
0: Listen back to your favorite shows by logging on to LaikaRadio.com and selecting Midlands or the mobile app. The sounds of love across the Midlands. The love sound. This is Laika Radio.